0: टन प्रतिदिन से 54,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और तीन या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The Election Commission has ordered for re-polling in 15 polling stations of West Bengal today. Re-polling will be held at 11 polling stations of Magrahat Pashchim Assembly constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly constituency in the state. More from our correspondent.
3: The Election Commission of India has ordered repolling in 11 booths in Magrahat Pashchim and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituencies in South 24 Parganas district of West Bengal. Commission has taken the decision after analyzing the reports of returning officers and observers. The repolling will start on 7 a.m. in the morning and end on 6 p.m. in the evening. Kollan Laha reporting from Kolkata.
2: Voting in these polling stations was held on Wednesday in the second phase of assembly elections in West Bengal. Government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders. Union Minister for Petroleum and Natural

0: ఉదయతరంగిణి కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 8 గంటలు కొద్ది క్షణాల్లో సమాచార ప్రభాత్ ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాథ్ మే కనకలతా. पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी. 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया. कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता. बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी. और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC U17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी. अब समाचार विस्तार से. पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है. इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे.
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है. इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं. अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है. इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था. न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी. कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती. कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा.
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है. ये कार्य इन राज्यों तथा

0: केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
1: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देशभर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट यार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चिउ हिस्यांग चिए और वांग चीलिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुनयी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए KL राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना। सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक

0: ट्रिब्यून लिखता है दाम 3,000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मानदान ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर, टोल फ्री सफर की जानकारी, टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बर्गी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोकसत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
3: Among these, 11 are in Pashchim Ograhat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamallu Bagchi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an urgent hearing. Day before yesterday, Calcutta High Court Justice Krishna Rao dismissed the Trinamool Congress's petition, stating that the court cannot interfere in the Election Commission's decision on recruitment of counting personnel. In response, the party rushed to the Supreme Court. Despite today being a holiday, the apex court has constituted this special bench to ensure the matter is heard without delay.
4: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Field operations for house listing and housing census under phase 1 of census 2027 have commenced from yesterday in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh.

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागचे की पीठ ने निर्देश दिया कि आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस कदम को चुनौती देने वाले तृणमूल कांग्रेस के लिए निर्णय एक बड़ा झटका है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अधिकारियों का चयन निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर पहले से ही एजेंट और पर्यवेक्षक मौजूद हैं। आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सूत्रों के अनुसार पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: We diversified our sources.
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व तो बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,

0: मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम। सभी श्रोताओं को जयदीप का नमस्कार। आज के हिंदी कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं प्रकाश किरण के अंतर्गत भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन और विचारों पर आधारित ये प्रेरणादायक संदेश। ये संदेश प्रस्तुत कर रही है सुजाता, आइए सुनते हैं।
1: परोपकारी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, वाद विवादकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि, राजनीतिज्ञ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपने 40 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में बहुमुखी भूमिका निभाई। 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में अबुल कलाम गुलाम मुहियुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आजाद के रूप में जन्मे। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे, जिन्होंने आजाद को उनके बचपन में अपने संरक्षण में रखा था। हालांकि आजाद सर सैयद अहमद खान के आधुनिकतावादी लेखन से प्रेरित थे कि किशोरावस्था में वे एक सक्रिय पत्रकार बन गए और कलकत्ता से निकलने वाला एक उर्दू अखबार अल हिलाल प्रकाशित किया, जिस पर बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रतिबंध लगा दिया। युवावस्था से ही राजनीति में सक्रिय रहने वाले वे दो बार 1923 और 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आजाद भारत स्वतंत्रता संग्राम के एक अत्यंत सक्रिय नेता थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में संक्षिप्त लेकिन सक्रिय भाग लिया, जिसके दौरान उन्होंने अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष का पद संभाला। खिलाफत आंदोलन के बाद आजाद महात्मा गांधी से प्रेरित हुए और उनके सविनय अवज्ञा आंदोलनों अर्थात दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ आंदोलन 1942 में सक्रिय रूप में भाग लिया। 1920 से लेकर 1945 के बीच उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। वे अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता के लिए बातचीत में शामिल थे, जिसमें उन्होंने विभाजन का कड़ा विरोध किया। गांधी जी ने मौलाना आजाद को विद्या का सम्राट कहा। मौलाना आजाद ने हर समय शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मूलभूत आधार मानते थे। 16 जनवरी 1948 को एक बैठक में आजाद ने कहा, हमें एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसके बिना वह एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकता। आजाद कांग्रेस के टिकट पर संयुक्त प्रांत संविधान सभा के लिए चुने गए थे। वे 5 अलग अलग समितियों के सदस्य थे और राष्ट्रीय भाषा तथा शिक्षा पर होने वाली बहस में हस्तक्षेप करते थे। हालांकि वे सभा में ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन एक वरिष्ठ पार्टी नेता के नाते वे पर्दे के पीछे और विभिन्न समितियों में होने वाले आंतरिक विचार विमर्श का एक प्रमुख हिस्सा थे। आजादी के बाद आजाद को शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। यह पद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में 1958 तक एक दशक तक संभाला। भारत और पूर्वी देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCCR की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनके प्रयासों के सम्मान में उन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें मरणोपरांत प्रकाशित उनकी आत्मकथात्मक कथा के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। उनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में गुबार ये खातिर, आजाद आन पाकिस्तान और तज़किरा शामिल है। अक्टूबर 1920 में मौलाना आजाद को अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना के लिए नींव समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था। 1934 में उन्होंने अलीगढ़ से नई दिल्ली में विश्वविद्यालय के परिसर को स्थानांतरित

0: करने में सहायता की। उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा की नींव रखी। उन्होंने कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली बार 1951 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली, अब दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी सहयोग संकाय के विकास पर भी जोर दिया।
1: प्रकाश किरण के अंतर्गत APJ अब्दुल कलाम जी पर आधारित ये प्रेरणादायक संदेश सुजाता के द्वारा प्रस्तुत किया गया, अभी आप सुन रहे थे। अब हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज के इस विशेष प्रस्तुति में हम लेकर आए हैं जल संरक्षण और संवर्धन विषय पर एक महत्वपूर्ण बातचीत। आज के दौर में पानी का महत्व और भी बढ़ गया है। जल के बिना जीवन असंभव है और इसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। इस विषय पर रोशनी डालेंगी विशेषज्ञ वक्ता मधुलिका चौधरी और उनसे बातचीत प्रस्तुत कर रही है सीमा कुमारी। आइए ध्यान से सुनते हैं ये उपयोगी और जागरूकता बढ़ाने वाली चर्चा।
2: जल हमारे जीवन का आधार है और इसकी कमी से हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जल संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना अब जरूरी हो गया है। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो कि 2021 से लेकर 2030 तक, यानी आने वाले जो कुछ साल हैं उस समय तक चलाई जाएगी। ये एक यूनाइटेड नेशन का डिकेड है जहां हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जिसको हम ग्लोबल मूवमेंट की तरह अपने हित में ले रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसका जो की ऑब्जेक्टिव्स है उसमें से एक ऑब्जेक्टिव्स ये भी है कि कैसे हम फॉरेस्ट को रिस्टोर करें, वेटलैंड्स को रिस्टोर करें, जो ड्राईलैंड्स हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं और जो अदर नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं उनको कैसे प्रिजर्व भी करें और कंजर्व भी करें। इस सिलसिले में आज हमारे आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं लेडी ऑफ लेक्स कही जाने वाली मधुलिका चौधरी जी, जिन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, और इन्हें खासकर हैदराबाद में यानी तेलंगाना में जो है गवर्नर एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है इनके वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेकर। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सीमा।
2: अब हम बात करेंगे जल संरक्षण की। जो जल का सही उपयोग है वो कैसे होता है, मतलब एक हम सिर्फ आम आदमी के लेवल से ही नहीं पूछ रहे हैं, अगर कोई कम्युनिटी जो है इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो जल का सही उपयोग कैसे कर सकता है।
3: जल एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत कुछ सिखाता भी है, और हम ये भी बात भूल जाते हैं कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे या हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, या जैसे आपने देखा भी UNDP के ही जो गोल्स हैं, तो ये सारे घूम फिर के आप देखिए जलवायु या जल के आसपास ही हैं। तो जल जब हमारी धरती पे बना उसके बाद से ही यहाँ पे जो है वो जीवन आया। अगर जल नहीं होता तो जीवन ही नहीं आता। तो इसीलिए जल के बारे में जानना, सोचना, और इवन जो इसका H2O मॉलिक्यूल है वो इतना इम्पोर्टेंट है और वो इतना मैजिकल है कि उसके बारे में समझने में ही बहुत मजा आता है जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो उस चीज के लिए इसको अगर हमें बचाना, एक ये हमारे लिए एक्चुअली जैसे जब हम अमृत की बात करते हैं है ना, तो ये अमृत है हमारे लिए, और अगर हम उसको नहीं जानेंगे और समझेंगे नहीं और उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो अमृत को जहर बनाएंगे तो फिर सब लोग जहरीले होते ही जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कम्युनिटी लेवल पे हमें जल कैसे बचाना चाहिए, देखिए शुरू होता है किचन से, है ना। किचन में हमारे यहाँ सब इंडियन किचन में सबसे पहले खाना बनता है और सब चीजों में हम जल यूज करते हैं। तो मैं अपने भी घर में ये काम मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी अपने घर में करती हूँ कि मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करूं धोने में भी, और अगर तो धोने के बाद जो पानी बच जाता है उसको मैं कुछ पेड़ पौधों में डाल दूं, उसको सीधे जो है वो नाले में जाने की नहीं कोशिश करती हूं। तो ये मेरे घर के अंदर भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तो ऐसे भी काम करती हूं, जैसे जो मेरा दूध का बर्तन होता है जिसमें हम लोग उबालते हैं, हमारा इंडियन किचन है जिसमें हम सुबह उठ के सबसे पहले दूध उबालते हैं, तो जब दूध हम हटा देते हैं तो मैं उसी ही बर्तन में जो है वो चावल भी बना लेती हूं। तो मैं ऐसा काम बहुत ज्यादा करती हूं जिसमें मैं मेक इट श्योर कि भाई मुझे कम से कम पानी, क्योंकि जितनी बार हम बर्तन धोएंगे उतनी भी हम पानी वेस्ट करते हैं। तो हमें हर चीज की छोटी छोटी चीज को हम अपने घर में देख सकते हैं जहां हम जल का इस्तेमाल कितना हमें करना चाहिए, जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि हम बिना जल के रह सकते हैं या हम इस्तेमाल ही ना करें, इस्तेमाल करें, लेकिन कैसे हम उसको, इसको बोलते हैं वाइज यूसेज, है ना। तो वाइज यूसेज करें कि जहां जहां हम बचा सकते हैं वहां हम बचाएं, जहां हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम इस्तेमाल करें, और जिस तरीके से हमारे पानी जा रहा होता है बाहर निकल के उसको हम अगेन पेड़ों में यूज कर सकते हैं या उसको हम वॉशिंग मशीन के में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम उसी पानी को बार बार यूज कर सकते हैं। आजकल हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजीज भी आ गई,

0: वो भी यही बता रही है कि भाई सेम पानी को हम बार बार यूज करें। इसके रीजंस हैं, देखिए क्या हुआ है, पहले जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता था काफी हद तक, क्योंकि भाई हमारे यहाँ बिल्डिंग्स नहीं थी, हमने इतना सीमेंट रोड का इतना जाल नहीं बिछा हुआ था, तो पानी को छोड़ देते थे, अपने आप चला जाता था भाई धरती में पानी, इतना सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल पानी पूरे ही शहरों में घूमता रहता है, घूमता रहता है, क्योंकि उसको मिट्टी मिलती ही नहीं है, कहाँ जाके एब्जॉर्ब हो, तो उन कंडीशन में वो फिर फाइनली जाके पता चलता है नदी नाले में ही जाके मिल गया। तो इसीलिए अब ये सोच ज्यादा जरूरी हो गई है। और देखिए ये एक कीमत है एक सिटी में रहने की, हमें सोचना है कि या फिर तो गांव में जाके रह लो भाई, लेकिन जब तुमको सिटी में रहना है तो उसके कुछ कायदे कानून है कि वो पानी जो सिटी में घूम रहा है, इवन बारिश का भी पानी है, वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। उसके लिए हमें इंसान को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी। डेफिनेटली वन ऑफ द वे इज वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग सब जगह सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, कहीं पर है कहीं पे नहीं है, बोरवेल्स इतने सारे हो गए हैं कि जितना रिचार्ज नहीं होता उससे तो ज्यादा पानी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा आपको ना अच्छे तरीके बताती हूँ, अगर आप देखेंगे अपने घरों के अगर आसपास पीपल का पेड़ लगाएंगे, तो पीपल का पेड़ हो गया या ये बैम्बू का पेड़ हो गया, इनके अंदर पानी सोखने की बड़ी अच्छी ताकत होती है, और ये फिर पानी को अपने आप अंदर ले जाते हैं और सीधे ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर देते हैं। तो इन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जहां पे आप वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें। तो सबसे पहले आपका किचन हुआ, किचन से बाथरूम हुआ, बाथरूम से आपने पेड़ों में दिया, उससे जो बचा ठीक है उसको हम जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू नहीं चल रही है ना, तो हम पेड़ ऐसे लगा सकते हैं जो कि पानी को बहुत सारा एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे घरों में जब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, तो क्या चीज उस टाइम पे हमें सूट कर रही है उस हिसाब से करना पड़ेगा। सिर्फ हम बस पढ़ें और डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर दें ऐसा पॉसिबल नहीं है। पानी सबसे, मैं ये बात कहती हूँ कि जिस दिन आप पानी से सीखने लगोगे कि बहना कैसे है, जिस दिन आप पानी से सीखने लगोगे कि कैसे जो बर्तन मिले उसकी शेप लेने नहीं, उस दिन आपकी जिंदगी सबसे आसान हो जाएगी। जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा पानी करता है। पानी बनिए, पानी से सीखिए और पानी को ही समझिए, आपकी जिंदगी बेस्ट होगी।
1: जी बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। ये जो इकोसिस्टम होता है, जैसे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की भी बात करते हैं और रिस्टोरेशन की भी बात करते हैं, ये कैसे क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करता है?
0: घूम फिर के हम फिर से पानी के पास ही आ जाते हैं, है ना। तो कई कई बार मैं कहती भी हूँ लोगों से कि जैसे मैं लेक्स रेस्टोर कर रही हूँ, तो जितनी भी मैं लेक्स रेस्टोर कर रही हूँ और जो मैंने लेक्स पहले भी करी हैं, उन लेक्स में दो तरीके से हम लोग नोटिफाई करते हैं कि वो रेस्टोर हुई कि नहीं हुई। रेस्टोरेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, एक तो हमने भाई चलो थोड़ा उसका ब्यूटिफिकेशन कर दिया, लोगों के बैठने के लिए सीट्स बना दी, थोड़ा सा वहां पे लॉन बना दिया, है ना, थोड़ा उसको सुंदर बना दिया, डस्टबिन्स वगैरह लगा दिए, लोग आ रहे हैं, थोड़ा कुछ लोगों के लिए लाइवलीहुड भी जनरेट कर दिया कि भाई चलो वहां पे दो तीन शॉप्स भी लगा दी। तो एक तरीके से एक पब्लिक के रिक्रिएशन का प्लेस भी बन गया, बोटिंग भी लगा दी, चलो भाई। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है जिसमें हम बायो इंडिकेटर रेस्टोरेशन करते हैं, मतलब कि बायोडायवर्सिटी कितनी बढ़ी। क्यों? देखिए जहां पे भी लेक होगी, है ना, तो उसमें तीन तरीके के जानवर रहेंगे, एक जानवर जो पानी में रहते हैं, एक जानवर जो जमीन पे रहते हैं, और एक जानवर जो पेड़ों में रहते हैं। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता चला जाता है, ये सारे जानवर, क्योंकि ये पानी के ऊपर है, उसी से अपना खाना पानी लेते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे ये कम होते चले जाते हैं, उसी तरीके से हमारा पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता चला जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। मेरी एक लेक है जिसपे मैंने रेस्टोर करना शुरू किया था, तो जो लोग सांपों के ऊपर काम करते हैं वो ये जानते होंगे कि सांप हमेशा शाम को निकलते हैं, शाम को या अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, रात में निकलेंगे, वो नॉक्टर्नल जानवर है, दिन में नहीं निकलता। लेकिन जब इको डायवर्सिटी इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि सांपों का कोई प्रीडेटर नहीं है, है ना, सांपों का प्रे तो है लेकिन प्रीडेटर नहीं है, तो वो दिन में भी निकल के आ जाते हैं। और मैंने लिटरली देखा कि एक मेरी लेक के ऊपर इतने सांप हैं और दिन में घूम रहे हैं ऐसे राजा बन के, जो कि साफ ये बात दिखा रहा है कि इको बायोडायवर्सिटी इम्बैलेंस हो चुका है। तो ये यहाँ पे जरूरी है कि जब रेस्टोरेशन की जहां पे भी बात आए, वहां पे ये भी बात आए कि बायोडायवर्सिटी कितनी इंक्रीज हुई है। तो ये सब हमारी ड्रैगन फ्लाइज इंक्रीज हुई कि नहीं, बटरफ्लाइज इंक्रीज हुई नहीं, बर्ड्स इंक्रीज हुई कि नहीं हुए, स्नेक्स इंक्रीज हुई, फिश का नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, टर्टल्स इंक्रीज हुए कि नहीं हुए, इन सबका पूरा एक काउंटिंग किया जाता है, जो कि आपको बताता है कि आपका रेस्टोरेशन मॉडल सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सिर्फ ह्यूमन इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ आइसक्रीम खाने गोलगप्पे खाने के लिए, तो उसको नहीं हम रेस्टोरेशन मॉडल बोलते हैं, उसमें बायोडायवर्सिटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, तब हम जाके उसको रेस्टोरेशन मॉडल बोलते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा तरीका है कि जब हम वाटर टेस्टिंग कराते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या किसी भी एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर से, तो वो क्योंकि ह्यूमन बेस्ड है तो उसमें ह्यूमन एरर आ सकते हैं, तो वो आपको दिखा सकता है अरे पानी बड़ा सुंदर हो गया। नहीं, वो एक सही तरीका या एब्सोल्यूट तरीका वाटर एनालिसिस पैरामीटर्स नहीं है। लेकिन जो आपकी बायोडायवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, जो कि आपको बता रही है कि मछलियां बढ़ रही है, मतलब पानी साफ हो रहा है, टर्टल्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब स्लज डिक्रीज हो रहा है। ड्रैगन फ्लाई इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि अब आपका इकोसिस्टम बहुत बेटर होता चला जा रहा है। तो यही है सही मापदंड एक रेस्टोरेशन मॉडल के बताने के, जो कि हम भूल जाते हैं कि भाई सिर्फ

0: एक कोई भी एक लेक या वेटलैंड या पार्क सिर्फ एक गोलगप्पे और आइसक्रीम खाने की जगह नहीं है, वो इससे बहुत बेटर है। इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं ह्यूमंस के अलावा भी, और उन सबको हमें पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए अपने इकोसिस्टम के लिए, अपने बचाने के लिए, अपने ह्यूमन स्पीसीज के लिए। हमारे अर्थ पे 84 करोड़ देवी देवता हैं जो कि हम एज अ इंडियन सिविलाइजेशन मानते हैं, और मैंने वो 84 करोड़ देवी देवता के दर्शन किए हैं जब ये इको सिस्टम रेस्टोरेशन हुआ है। तो मैं आज जाके समझती हूँ कि 84 करोड़ देवी देवता क्यों माने जाते हैं, क्योंकि यही हैं हमारे अर्थ पे, ह्यूमन के अर्थ पे जिंदा रहने के तरीके और सही तरीके से मापदंड।
1: जी, बहुत ही सही बात बोली है आपने, क्योंकि सही में जो सदियों से चली आ रही है, जो विरासत है हमारी, वही हमें विकास की तरफ भी ले जाएगी। जी, अब हम बात करेंगे, अभी तो हमने बात की इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की, बट उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं?
0: बिल्कुल है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर आप देखिए जैसे कि इको रेस्टोरेशन हुआ, हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं तुलसी से या गेंदा, गेंदे के फूल से, जो सब लोग जानते हैं ना। मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ, बहुत आयुर्वेदा में नहीं जा रही हूँ। आप तुलसी ही देखिए जो कि एक अकेला प्लांट है, जो गेंदा है ये अकेला प्लांट है जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट भी है, स्नेक रिपेलेंट भी है और पूरे एनवायरमेंट को साफ करता है। आपको अगर पपीते लगाने हैं, पपीते की खेती करनी है, उसके चारों तरफ आप जो है वो गेंदे के फूल लगाइए तो फंगस ही नहीं आएगी, है ना। तो अगर पपीते की खेती करनी है तो उसके लिए अगर हमारा इकोसिस्टम प्रॉपरली है तो फंगस ही नहीं आएंगे, कीड़े ही नहीं आएंगे। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जहां पर हम जो खेती इस तरीके से कर सकते हैं जो कि जिसमें बोली ऑर्गेनिक खेती हो और इसमें कोई कीड़ा ना हो, हमें कोई पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत ना पड़े, ये थोड़ी थोड़ी अगर जानकारी हमारे पास हो। अब आपको काम करना है नीम, जैसे कि हम नीम की ही बात करिए, नीम ऑयल लोग यूज करते हैं मेरे घर में, मैं रोज पत्ती उबालती हूँ और वही वो मैं डाल देती हूँ। तो ये नीम से लेके सारे यूकलिप्टस जितने भी ये प्लांट्स हैं, ये सब के सब हमारे पूरे शरीर, देखिए लेक हेल्थ होती है, इकोसिस्टम हेल्थ होती है, ह्यूमन हेल्थ होती है ना। ह्यूमन हेल्थ कैसे ठीक रहेगी जब तक इकोसिस्टम हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। इकोसिस्टम जब तक हवा अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, बाहर का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, अगर वो अच्छा नहीं है तो ह्यूमन हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी। तो ये बात मान के चलिए कि हम जिंदा हैं, ये तो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी ये जड़ी बूटियां हैं ये हर चीज में यूज होती हैं, ये पेड़ हर चीज में यूज होते हैं, फिश अच्छी यूज होती है। इकोसिस्टम अच्छा होगा तो फिश अच्छा होगा, लोग खाएंगे उसे, है ना। तो ये पूरा का पूरा आप हर जगह कहीं पे भी जाके देख लीजिए, पानी अच्छा होगा तो खेती अच्छी होगी। तो ये पूरा एक रिलेटेड चेन है और जब ये सब अच्छा होगा तभी हम जी पाएंगे। देखिए घूम फिर के हम ये सब क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें ह्यूमंस को जिंदा रखना है। अगर ह्यूमंस तभी जिंदा रह पाएंगे जब एनवायरमेंट जिंदा रहेंगे, है ना। डायनासोर्स थे चले गए, है ना, इसी तरीके से ह्यूमन भी चले जाएंगे अगर हम नहीं ध्यान देंगे उठ के। तो अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो इंटेलिजेंसिया का टाइम है ये, जो आप उठिए और दिखाइए और उसके ऊपर वर्क ऑन कीजिए।
1: जी, अब हम बात करेंगे जो ग्रेट ग्रीन वॉल की बात हो रही है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो इनिशिएटिव है वो क्या है और इसे ग्रेट ग्रीन वॉल क्यों कहा जाता है।
0: सिंपल है, इस नाम से भी हम समझ सकते हैं। तो हमारे ये यूनाइटेड प्रोग्राम्स होते हैं, इनके थ्रू एक ये ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम बनाया गया है जिसके ऊपर हम अरावली जो रेंजेस हैं उनके ऊपर ये काम करेंगे। और ये है कि हम उनको कितना ग्रीन कर सकते हैं, उनका कितना डेजर्टिफिकेशन कम कर सकते हैं और कितना उनको और बेनिफिशियल बना सकते हैं जिससे कि लोगों का लाइवलीहुड बने। हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि जब गोवर्धन कृष्ण भगवान ने उठाया तो उस टाइम पे गांव के लोगों से कृष्ण भगवान ने एक ही बात कही कि ये गोवर्धन पर्वत है, ये तुमको मेडिसिन देता है, ये तुम्हारे जानवरों के लिए खाना देता है, ये तुमको फसल देता है, तो इसकी पूजा करो। ये शुरू से हमारे कल्चर में चलता चला आ रहा है कि ये सारी चीजों की जब हम पूजा करेंगे तो अपना ही हमारा खाना चलता रहेगा, अपना ही हमारा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल बनता रहेगा। वही वही जो गोवर्धन पूजा थी वही आज है ग्रीन ग्रेन, ग्रेट ग्रीन वॉल के फॉर्म में आ रही है, जिसमें अरावली रेंजेस का रेस्टोरेशन उठाया जा रहा है, जिसमें काफी साल लगेंगे क्योंकि ये सबसे पुराने हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल माउंटेन्स हैं और जिनको हमें प्रोटेक्ट भी करना है। तो सिर्फ एक ये आने वाली जनरेशन के लिए ही नहीं, ये हमारे लिए भी जरूरी है कि हमारे इतने पुराने सबसे बेसिक इंडिया के जो माउंटेन्स हैं उनका प्रोटेक्शन भी किया जाए और उनको ग्रीन वॉल भी बनाया जाए, प्लस उनको बचाया जाए जिससे कि जो भी अभी एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं और जो माइनिंग्स हो रही हैं उनसे भी उनका प्रोटेक्शन किया जाए। तो ये लंबा प्रोग्राम है, इसी तरीके से बहुत अलग अलग देशों में भी ये चीजें चल रही है इस टाइम पे। युगांडा में भी बहुत काम चल रहा है, इवन बैम्बू रेस्टोरेशन के ऊपर भी चला जा रहा है कि भाई बैम्बू फेंसिंग क्रिएट करके, क्योंकि बैम्बू इस टाइम पे ऐसा एक पेड़ है जो कि जैसे मैंने कहा वाटर को भी जो है वो रिस्टोर करने में काम आता है, प्लस उससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो ये मल्टी मीन्स हम लाइवलीहुड भी जनरेट कर रहे हैं, हम रेस्टोरेशन भी कर रहे हैं और हम कंजर्वेशन भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें इफेक्टिवली एंड कलेक्टिवली वेन वी आर एबल टू डू इट, तभी हमारा ये बन पाएगा एक ग्रीन ग्रिड मॉडल।
1: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब हम बात करेंगे आधारभूत सुविधाओं के, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होते हैं या फिर

0: जिसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं, जिस वजह से हम वाटर बॉडीज, कोस्टल एरियाज, इन चीजों को हम रीस्टोर कर सकें, उसके लिए क्या काम होने चाहिए?
1: इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस्ड, देखिए अगेन यहाँ पर बात आती है मेट्रो एंड अर्बन सिटीज की। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अर्बन लेक्स और रूरल लेक्स में डिफरेंस है। रूरल लेक्स में अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है रेस्टोरेशन की, लेकिन जब अर्बन लेक्स की बात आ जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरत हो जाती है कि जो पानी उस लेक में जा रहा है वो किस टाइप का है। आजकल की जो टाइमिंग्स हैं उसमें अगर हम इंडियन सिटीज की

0: जाती है कि जो पानी उस लेक में जा रहा है वो किस टाइप का है। आजकल की जो टाइमिंग्स हैं उसमें अगर हम इंडियन सिटीज की बात करें तो जैसे ही बारिश का पानी धरती पे पड़ता है वो गंदा हो जाता है, और जैसे ही वो फिर फ्लो होके आता है किसी भी नदी नाले तालाब में तो वो मिक्स होता है स्विच और स्टॉर्म वाटर का, तो हम उसको प्योर रेन वाटर या प्योर स्टॉर्म वाटर कह ही नहीं सकते। तो किसी भी सिटी में, किसी कोई भी आप 3 टायर 2 टायर मेट्रो सिटीज उठा लीजिए, ये सबकी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए अभी हमें क्या करने की जरूरत है, देखिए जैसे आपको पता चले कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट हुआ है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी नलियां साफ करनी पड़ेंगी और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल वही काम हमें लेक्स के साथ करना पड़ता है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई भी वेटलैंड या कोई भी स्पेशली जो अर्बन मेट्रो सिटीज के आसपास हैं या अर्बन लेक्स अंदर ही हैं, जो उनको जब हमें पता चलता है कि भाई अभी इसकी हालत खराब होनी शुरू हो रही है, द फर्स्ट मेजर स्टेप इज कि पहले आप उसका रेस्टोरेशन स्टार्ट करवाइए। आप देखिए उसके इनलेट आउटलेट्स क्या हम पूरे ओपन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट सॉल्यूशन। उसके बाद उसमें उसका जो बायोडायवर्सिटी है कितना रह गया है, कितना बढ़ा सकते हैं, क्या उसका साइज है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूं कि अब जैसे आप हैदराबाद में लीजिए, तो हैदराबाद में मान लीजिए आपका जीएचएमसी है जिसमें 185 लेक्स हैं, तो अब 185 लेक्स में जो बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं उनको आप टूरिज्म के तरीके से डेवलप करिए, राइट? तो टूरिज्म मॉडल बनाया जिसमें आप बोटिंग करवा सकते हो, दुर्गम चेरू इज वेरी नाइस, हुसैन सागर भी कोशिश तो करती ही है, तो उस हिसाब से काफी सारी चीजें हैं जिनसे वो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कर सकती हैं। लेकिन वो जो लेक्स जो छोटी हैं, जो 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ के बीच में लेक हैं, है ना, उन लेक्स को आप बायोडायवर्सिटी मॉडल के थ्रू लेके जाइए। बायोडायवर्सिटी मॉडल में क्या रहेगा कि आप उनको जो है किसी एक लेक को सिर्फ बैम्बू जनरेट करने के लिए यूज करिए, किसी लेक को आप मोरिंगा जनरेट करने के लिए यूज करिए, किसी लेक को आप यूकेलिप्टस के लिए यूज करिए। तो इस तरीके से बहुत सारी जो लेक्स का जो डिफरेंट डिफरेंट लेक मॉडल हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के हिसाब से यूज करनी चाहिए। अब कुछ लेक्स बहुत ही ज्यादा छोटी हैं, जो सिर्फ 1 एकड़ की हैं या 2 एकड़ की हैं, तो उनके लिए हमें टिपिकल तरीके से एक रेस्टोरेशन, जिनको हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, उनको आपको बनाने की जरूरत है। तो यहां पर हमें जरूरत यह है सोच की कि हर एक मॉडल, जैसे कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, उसी तरीके से हर एक वेटलैंड, हर एक लेक, हर एक फॉरेस्ट दूसरे मॉडल से डिफरेंट होता है। हम हर चीज को सेम तरीके से नहीं देख सकते। यही तो हमारे देश की एक जो डायवर्सिटी है वो ही हमें यूनिटी देती है, और यही हमें सोच और दूसरों से अलग भी करती है। मैं इस बात के लिए बहुत करती हूँ कि आप किसी भी हमारे डायरेक्शन में देश के किसी भी कोने में जाइए, आपको बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिलेंगी। इवन हैदराबाद में ही आप जुबली हिल्स में जाइए तो डिफरेंट है, आप उपल में जाइए तो डिफरेंट है, आप कापरा में जाइए तो डिफरेंट है, आप मनीकोंडा में आइए तो डिफरेंट है, लेकिन सोच भी उसी तरीके से उनके डेवलप करने में डिफरेंट होना चाहिए। तो मॉडल्स क्योंकि हम बस एक ही तरीके से आज तक देखते आ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है कि लेक रेस्टोरेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। प्लस जो आसपास की कम्युनिटी है उन लोगों को इन्वॉल्व करना, उनको सही तरीके से सोचना। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्बन सिटीज फेस कर रही हैं एक माइग्रेटरी पॉपुलेशन, तो उसमें हम सिंपैथी तो ला पाते हैं लेकिन एम्पैथी नहीं ला पाते हैं। तो उन कंडीशंस में हम लोगों को अगेन, जैसे मैंने कहा कि जो वहां स्लम एरियाज में रह रहे हैं उनके हिसाब से, जो वहां का लोकल विलेज है जो बहुत सालों से, उसके हिसाब से, या अगर लेक बिल्कुल ही एक हाईटेक सिटी एरिया में आ गई है जो आसपास पुराने लोग बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके हिसाब से हमें डेवलप करने की जरूरत है। तब तो हमारा सस्टेनेबल मॉडल बनेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्लस मेंटेनेंस इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट,
1: यानी जल संरक्षण और संवर्धन जो है वो लोगों की सुविधाओं के अनुसार, उनकी आधारभूत जो उनके पास सुविधाएं मुहैया हैं उनको देखते हुए उन्हीं के अनुसार होना चाहिए।
0: बिल्कुल, तभी वो सस्टेनेबल होगा,
1: तभी ये सस्टेनेबल हो सकता है। जी, जल संरक्षण आज का जरूरत है और इसके लिए हमें बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग भी करना चाहिए और अपने अपने जो कंट्रीब्यूशन है वो भी देने चाहिए। मधुलिका चौधरी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपने कीमती वक्त में से निकाल के हमारे आकाशवाणी हैदराबाद को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये था आज का विशेष हिंदी कार्यक्रम जिसमें हमने जल संरक्षण और संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक विस्तारित और प्रभावशाली चर्चा सुनी। आप सुन रहे थे एक विशेष बातचीत जिसे प्रस्तुत कर रही थी सीमा कुमारी और जिसमें अपने विचार व्यक्त किए मधुलिका चौधरी जी ने। इस जानकारी से हमें ये समझने का अवसर मिला कि जल का संरक्षण और सही उपयोग से ही हम अपनी भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। हमें आशा है कि ये प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में चलिए सुनते हैं कुछ मधुर गीत। पेश है फिल्म माचिस का ये सुंदर सा गीत पानी पानी रे। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। इसका संगीत दिया है विशाल भरद्वाज ने और इसके गीतकार है गुलजार। आइए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले हिंदी कार्यक्रम में इसी मीटर्स पर। तब तक के लिए जयदीप को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के

0: बीच 12वें पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले दो दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवी के पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों

0: को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

0: विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC Under-17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। Under-17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और Under-20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है
2: आकाश सरमानी। बालानंदम।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: लियोन जेम्स సంగీతం సమకూర్చి అనిరుద్ధ్ రవిచందర్తో కలిసి గానం చేశారు కాసర్ల శ్యామ్ గీతం ఓరి దేవుడా సినిమా కోసం.

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు.
1: ये आकाशवाणी है, अब आप वाजिदुल्लाह खान से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में आरटीसी को मुस्तहकम करने के साथ साथ वर्कर्स के मसाइल की मुकम्मल तौर पर यकसुई का वादा किया। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक़िद होने वाले नीट यूजी इम्तिहान के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरकजी वजीर कोयला व कानकनी जी किशन रेड्डी ने इतला दी है कि वजीर अजम मोदी रवां माह की दस तारीख को वर्चुअल तरीके से पीएम मित्रा काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क का इफ्तिताह करेंगे और बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के दौरान दी गई 6 जमानतों और 420 वादों को पूरा करने में नाकाम रही। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की इस दरख्वास्त पर मजीद किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट की जानिब से उनकी दरख्वास्त खारिज किए जाने को चैलेंज किया गया था। यह दरख्वास्त मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के लिए मरकजी हुकूमत के अहदेदारों की तैनाती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर्कुलर के ख़िलाफ़ थी। जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जय मालिया बागची पर मुश्तमिल खसूसी बेंच ने निशानदेही की कि इलेक्शन कमीशन गिनती के अमले के इंतखाब का मजाज है और इसके 13 अप्रैल के सर्कुलर को गलत करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि सर्कुलर में वाज़ेह तौर पर मरकजी और रियासती हुकूमत के मुलाजमीन के इम्तिजाज की गुंजाइश मौजूद है। कमीशन ने कहा कि किसी भी गलत काम के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस का खदशा बेबुनियाद है। इसने यकीन दिलाया कि सर्कुलर पर इसके रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। खसूसी समाअत करने वाली बेंच ने मजीद कहा कि कमीशन मरकजी हुकूमत के अमले के बशमूल एक ही पोल से गिनती के अहदेदारों का इंतखाब कर सकता है। मगरबी बंगाल की 294 रुकनी असम्बली के लिए पोलिंग 23 और 29 अप्रैल को 2 मरहलों में हुई थी, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मकानात की फेरिस्त साजी और हाउसिंग सेंसिस के फील्ड ऑपरेशंस शुरू

हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि

जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: సరిలేరు నీకెవ్వరు ఈ సినిమా కోసం నక్కజ్ అజీజ్ లవిత లోబో గానం చేసిన రామజోగయ్య శాస్త్రి గీతం దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతాన్ని సమకూర్చారు.
3: పార్టీ హై తూ ఆ జానా.

0: చిత్రసీమలో చివరిగా మీరు విన్న ఆ పాట కొత్త బంగారు లోకం. ఈ సినిమా కోసం కార్తీక్ గానం చేశారు, అనంత శ్రీరామ్ గీతం, మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం సమకూర్చారు.
1: శబ్ద తరంగాలపై పయనం ప్రతి ఒక్కరి జీవనంలో అంతర్భాగం. బహుజన హితాయ, బహుజన సుఖాయ తన సంకల్పం. ఆకాశవాణి మీ తోడు, మీ నీడ.
0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. సమయం 8:45 కావస్తోంది. కొంచెంసేపట్లో వార్తా ప్రసారం. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
2: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ సంధ్యా కే సాథ్ మై మునీష్ శర్మ. मुख्य समाचार. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े. पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की. सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया. छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त. लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त. और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. और अब समाचार विस्तार से. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया. मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए. इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ.
3: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा. चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था. इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के 2रे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे. पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी. असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था. तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया. कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा.
2: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है. मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं. राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था. मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी.
4: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया. 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है. करूर विधानसभा क्षेत्र में

0: अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज C.DOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस C.DOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार

0: थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाए, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
0: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
2: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
3: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे देश प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे।

0: अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वे अब संत त्यागराज की रचना गिरिराज सुता प्रस्तुत करेंगी, जो राग बंगाला तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग देयर कॉन्सर्ट दे विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा गिरिराज सुता इन राग बंगाला सेट टू आदि ताल।

0: राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता द्वारा वायलिन युगल वादन सुन रहे हैं। आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बी एस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा आदिताल पर निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर

0: सिंधु सुचेतन और HM स्मिता प्रस्तुत करेंगी मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना मीनाक्षी। यह राग पूर्वी कल्याणी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड HM स्मिता विल नाउ प्रेजेंट मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदि ताल।

0: अभी आपने तानी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर बी एस प्रशांत और घटम पर जी ओंकार राव ने प्रस्तुत किया।
1: That was Tani Avartanam presented on Mridangam by B.S. Prashant and on Ghatam by G. Omkar Rao.
0: सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का समापन राग देश में तिलाना से करेंगी, जो विद्वान लालगुड़ी जयरामन की रचना है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल कंक्लूड देयर वायलिन ड्यूट रिसाइटल विद तिलाना इन राग देश, अ कॉम्पोजिशन ऑफ विद्वान लालगुड़ी जयरामन।

0: आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर बीएस प्रशांत तथा घटम पर जी ओंकार राव.
1: विद दैट वी कंक्लूड वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक. दे वर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बीएस प्रशांत एंड ऑन घटम बाय जी ओंकार राव.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से प्रसारित किया गया.
1: This program was a contribution of Akashvani Bengaluru, brought to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया. मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए. शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ.
3: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा. चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था. इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे. पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी. असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था. तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया. कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा.
2: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है. मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं. राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था. मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी. सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है. आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया. सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा. वोटों की गिनती 24 मई को होगी. छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए. इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी. प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है. श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया।

0: गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी।